0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
5: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फुल। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी, नाम बताएं।
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर।
0: जी मोनिका जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: रिया प्रिया क्यों बुला दिया?
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो।

0: जी नाम बताएं।
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: वो वाला, वो हसीना वो नीलम परी कर गई थी जादूगर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आप, काफी सुनाई।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।
3: हेलो
4: हेलो सर, नमस्कार
3: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
4: सर अगला उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा था।
3: राजू लबानिया जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: टाइटल सॉन्ग है, फिल्म का नाम है जिंदगी एक जुआ।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो DS में कुल किया। धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो जी, नाम बताएं सर?
3: नाम बाबू खान।
2: बाबूलाल जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: चेहरे पे खुशी छा जाती है।
2: चेहरे पे खुशी छा जाती है, सुना रहे हैं सर आपका? आपकी समय से बेहतरीन था।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
0: नाम तुलसी राम मीना, ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
1: तुलसी राम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: दिल दिया ओ पिया।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों, वक्त हो चुका है 10:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिजान खान जी की। फिजान खान जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना, और इसी गाने को सुनने के लिए हमारे पास कॉल किया है कनक शर्मा जी ने। कनक शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इन दोनों की फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

अभी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करिए और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए। हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। पुणे प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: जी नाम बताएं सर।
4: इब्राहिम खान।
3: इब्राहिम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: बोला अगर मासूम शर्मा का हमारी एंट्री हो गएगी, माहौल बना देंगे।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ही गाना। हेलो

0: माहौल बना देंगे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ही गाना। हेलो हेलो जी, नाम बताएं।
2: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
2: ब्रज रेडियो प्रसार मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति बात कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे
1: जी? शारदा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
2: ऐसा सावन।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको आपकी।
2: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।
2: धन्यवाद।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
0: सर मेरा नाम अय्यूब सलमानी।
1: अय्यूब सलमानी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: चूलीगढ़ रंगापुर सिटी से सर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर आज गाना सुनना चाहते हैं छत्तीस आएंगी छत्तीस जाएंगी मेरी वाली तो मम्मी लाएगी।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश करेगा।
2: मामा मैंने शादी नहीं करनी यार।
3: मैंने तुझसे पूछा नहीं, बता नहीं।

0: हेलो हेलो हेलो मम्मा, ये बाथरूम में था मम्मा, बाथरूम में था।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम है रोशन खान, मदीना बच्ची से बोल रहा हूँ मैं।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना को सुनना चाहता हूँ साहब, मेरा मन डोले तेरा मन डोले, मेरा दिल का गया करा।
1: ओके सर, सुना की फरमाइश पर ये गाना।

वक्त हो चुका है 10:51 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम है प्रियांशी।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो?
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हैंगओवर।
1: हैंगओवर जी सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: हाँ, रतनलाल बोल रहा हूँ, महू कला से।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जरा सामने तो आओ, चलिए चुप चुप चलने में क्या राग है।

0: हेलो
1: भाई, नमस्कार सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: सैयद खान पुरानी निजामत।
0: सैयद खान जी पुरानी निजामत से बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: कजरा मोहब्बत वाला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, कजरा मोहब्बत वाला आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: बानू प्रताप सिंह।
0: बानू प्रताप जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: करौली से।
0: करौली से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: मशहूर सॉन्ग सुना रहे हैं आपका। जी नाम बताएं।
1: कानू
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं कानू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मजबूर।
0: मजबूर सॉन्ग सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश पर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी भैया, योगेश जांगड़े भी मैं तुम्हें शक्ति से करता हूँ।
0: योगेश जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म पूरा और काटे से सुनवा देंगे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, कौन सा गाना है?
1: कोई सा भी गीत।
0: ठीक है सर।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
0: जी सर, मेरा नाम है सोहेल सैफी।
1: सोहेल सैफी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं राजू कॉलोनी गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी मेरा गाना सुनना है तेरे मेरे दोस्ती, प्यार में बदल गई।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नाम बताएं आपका।
0: लतीफ मोहम्मद रैना कश्मीर से।
1: लतीफ मोहम्मद रैना कश्मीर से, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बरसात फिल्म का।
1: बरसात का कौन सा गाना सर?
0: कोई भी सुनाइए।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मनीषा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ सर नमस्ते
1: नमस्ते भैन जी सत्रीकाल
0: सत्रीकाल सर
1: ठीक है परिवार
0: क्या सर
1: मैं बढ़िया बढ़िया तू सुपर वाह ठीक
0: है सर और नाम क्या है आपका
1: नाम है अपने बूटा सिंह मान नत्त रोड तलवंडी साबू डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब
0: जी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी
1: मैं आज मैंने गाना सुना दे परदेसी बाबू दा कुछ खोना है कुछ पाना है
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद बने

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:41 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
2: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: तोड़ के नजाओ किया।
2: वो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: पागल।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: पलक।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैं राधा लिखूंगा।
1: क्या?
0: मैं राधा लिखूंगा।
1: ओके ओके मैम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: जी, नाम क्या है आपका?
2: निकिता।
3: जी नाम क्या है आपका?
2: निकिता।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: रेलवे स्टेशन।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: क्योंकि
3: सुना रहे हैं आपकी शर्मा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कशिश।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: दुर्गापुर स्थिति।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: इश्क है इश्क।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? नाम क्या है मैम आपका?
1: अंकित।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हो?
1: बिंदापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रोहतक टुडू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: मैं सबसे आया किसी को साथ न लाया, रोहतक पर जब मैंने अपना कब्जा जमाया और दोनों चूहों पर अपना जाल बिछाया।

0: हाँ जी,
1: हेलो,
0: आपका कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनोगे?
1: आई लव यू यार गवा बेटी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

मिनट का दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अमित।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लूट लिया रे लूट लिया तन दौड़े।
0: वो कैसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है?
0: गौतम मीना।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? तो सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चांदनी रात में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी।

में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ DS साइंस अकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस अकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
3: ये DS साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये DS साइंस अकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
4: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
5: DS साइंस अकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस्ड।

0: DS साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर रेडियो_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है,

दोस्तों वक्त हो चुका है दो बच्चों के, इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

सुबह हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूलिए विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:34 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों हमारे स्टूडियो नंबर है 6378024475, पुणे प्रयास करे 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर, आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।
1: बैठ के है
2: ओहो

0: अरे गड़लो तो भर लीजो, आओ थोड़ी बात करना। कितनी ठंडी ठंडी छाया है।
1: नहीं सा नहीं आ, बैठो मैं थाने पानी भर लाऊं।
0: अरे दो मिनट तो बैठो, यूं कहीं जाओ।
1: हाँ बोलो, कहीं बात करनी है।

हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।
1: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ।
2: वेरी गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
2: जी, मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आनंद।
1: जी, गाने के बोल?
2: गाने के बोल है, मैंने सात रंग के सपने तुम्हें।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: कर रहा हूँ, आगे फोन ही नहीं लगता दीदी।
0: सर वो क्या कॉलिंग चलती रहती है इसलिए फोन इसलिए नहीं मिल पाता, क्योंकि ऊपर नीचे कॉल आती रहते हैं, किस किस का कॉल उठाए, बहुतों का तो मिस हो जाता है कॉल उठाने का, वो ही रहता टाइम, दिक्कत ये
1: है
0: ना। वो दिक्कत ये है कि जैसे अपन कॉल उठाते हैं तो वो कॉल कट जाता है, किसी न किसी का तो हो ही जाता है कटने में। हाँ सर बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जल्दी हो जाए ना, बढ़िया गाना लेके आए।
0: हाँ सर बताओ।
1: चल सन्यासी मंदिर में।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
3: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम अय्यूब सलमानी मैम।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: चूलीगेट गंगापुर सिटी से।
3: सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: आज गाना सुनना चाहते हैं पहला नशा पहला प्यार।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेशान

0: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेरा से बोल रहा हूँ बहन जी।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है यतीम और गाने के बोल है जी भर के साजन का दीदार करेंगे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।

0: सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम है सोहेल सैफी।
0: सर कहाँ से बात कर रहे हो? ऐसे बोल रहे हैं गुड इवनिंग।
2: हेलो।
0: नहीं इतने 10 थ्योरी सबको हटाओ, नंबरों को सारे रिकॉर्डिंग डिलीट को हटाओ, सारे रिकॉर्डिंग नेक्स्ट साथ जब मैंने दोबारा लिया आई इसलिए। सर बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जी मैडम धुरंधर 2 का सुना दो गाना।
0: धुरंधर 2। ओके सर सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:49 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विवेक।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बैरन।
1: बैरन
0: ना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा

0: गुड इवनिंग सर।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चल चमेली बाग में।
1: चल चलेरी बाग में
0: जी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के।

0: कोमल।
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: मैम कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सोनिया नु प्यार भी नहीं करता।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिणाम

0: और बॉलीवुड सॉन्ग। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हमारा नाम राम फुला।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: हम गंगापुर सिटी से बात कर रहे हैं।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मीना गीत सुनना चाह रही सुना हुई?
0: नहीं मैम, मीना गीत नहीं सुना सकते।
1: फिल्मी सुना सकते हो?
0: हाँ, राजस्थानी और बॉलीवुड सॉन्ग सुना सकते हैं आपको।
1: मासूम शर्मा के सुना सकते हो?
0: ओके ठीक है मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: बाबू खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आपसे प्यार हुआ आप छुपाओ बैठे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं मोनिका जी?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: इश्क है, इश्क है, वो इश्क फिल्म का गाना है ना उसका।
1: ओके मैम, सुना रहे
2: हैं। एक बार हमें हर नजर तीर सही, देखिए एक बार हमें।
3: और दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:05 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36°C और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मनु।
1: मनु जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा सर?
2: सब कुछ कोड़ मेरे, अखां सामे तू नहीं है हो दिल विच मौल मेरे। अज 14 साल बाद मुड़िया हां उन्हां रावां ते, देख के उही हवावां क्यों अल्लाह कल।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: घूमते में चंदा पहला चारों और उजाला कोयला पिक्चर का गाना।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: अंकुर चड्डा का स्वयंवर शुरू किया जाए।
3: नंबर वन मेड इन चाइना राजकुमारी चुन ली। इंग्लिस्तान से राजकुमारी गुलगुलु ग्लोरिया। दोनों देसी रानियों को पेश किया जाए।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: दुनिया में एक सबसे मुश्किल टास्क है किसी को ना कहना। मैं हूँ आरजे खुशी और इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने सही समय पर लोगों को ना कहना शुरू कर दिया था। नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैंने सोचा कि मैं अपने आप में एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश करूंगी, वो ये कि अगर मुझे लगता है किसी के काम को करने से मुझे आगे आने वाले समय में बुरा लग सकता है, रिग्रेट हो सकता है, तो मैं उस काम को, उस इंसान को ना कह दूंगी। मुश्किल तो है ये काम, लेकिन अगर सच्चाई के पथ पर चलने के लिए किसी को ना बोलना पड़े तो ये गलत नहीं है। कई बार लोग दोस्ती यारी में अपना बहुत नुकसान करा लेते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए ना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बदलाव आज ही से और अभी से। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: अगर आप सोच रहे ना कि जीवन में आप सबको खुश कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं हूँ आरजे खुशी, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे खुद के भगवान है। जब उनका प्राकट्य हुआ धरती पे, तो क्या 100% लोग ऐसे थे जो उनको भगवान मान रहे थे, या 100% लोग उनसे संतुष्ट थे? नहीं। जब उन्हीं से लोग संतुष्ट नहीं थे, तो हम कैसे मान लें कि लोग हमसे संतुष्ट होंगे? और हमारा काम भी नहीं है किसी को संतुष्ट करना। हमारे शास्त्रों में ये बात आती है कि अगर हम लोगों को संतुष्ट करने में लग गए ना, तो हमारा महत्वपूर्ण समय निकल जाएगा। हमें वो करना चाहिए जो सही है, चाहे सामने वाले को समझ आ रहा हो या नहीं। किसी के प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके वो काम हमें बिल्कुल नहीं करना जो हमें अधर्म के पथ पर चला दे। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।

0: आज मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन कर देती हूँ। मैं हूँ आरजे खुशी। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये इंसान इतना खराब है, लेकिन फिर भी इसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। भगवान हमेशा इसका साथ देते हैं, और मुझे देखो, मैं सच्चाई के राह पर चलता हूँ या चलती हूँ, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं देते। हमारे शास्त्रों में इस बात का भी जवाब है। तो जिस इंसान का अच्छा वक्त आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली उसके खुद के ही पुराने कर्म है, वो पुण्य कर्म जो सुख के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो आपको बुरा समय अपना दिख रहा है, वो एक्चुअली आप ही के पाप कर्म है जो आपको दुख के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई पुण्य कर्मों का फायदा उठाते हुए गलत काम कर रहा है, तो ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएगा। वहीं अगर आप अपने पाप कर्मों को चुपचाप नाम जप करते हुए निकाल लेंगे, तो आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें और भगवान का नाम जप करें। सबसे जरूरी बात तो यही है। मिलूंगी आपको कल इसी समय इसी पते पर। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 में।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: बजना चाहिए गाना।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 89.6 गंगापुर सिटी कगड़ का सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
0: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम, तेरा
1: रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे राम, हेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।
1: गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।